हजुर श्रोता सुन्नुभयो, भर्खरै निकै नै रमाइलो मौलिक लोकलयमा निकै नै रमाइलो देउडा गीत। हजुर श्रोता, अहिलेको लागि भने तपाईँहरूलाई लान चाहन्छु नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कद्वारा तोकिएको खुल्ला बजार वैदेशिक विनिमय दरतर्फ। युएस डलर एकको खरिदर 154 रुपियाँ 48 पैसा, बिक्री दर 155 रुपियाँ 8 पैसा। युरो एकको खरिदर 173 रुपियाँ 32 पैसा, बिक्री दर 173 रुपियाँ 99 पैसा। पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिदर 204 रुपियाँ 55 पैसा, बिक्री दर 205 रुपियाँ 35 पैसा। स्विस फ्रान्क एकको खरिदर 185 रुपियाँ 92 पैसा, बिक्री दर 146 रुपियाँ 64 पैसा। अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिदर 107 रुपियाँ 83 पैसा, बिक्री दर 108 रुपियाँ 25 पैसा। क्यानाडियन डलर एकको खरिदर 108 रुपियाँ 57 पैसा, बिक्री दर 108 रुपियाँ 99 पैसा। सिङ्गापुर डलर एकको खरिदर 120 रुपियाँ 68 पैसा, बिक्री दर 121 रुपियाँ 15 पैसा। जापानिज येन 10 को खरिदर 9 रुपियाँ 76 पैसा, बिक्री दर 9 रुपियाँ 80 पैसा। चाइनिज युआन 1 को खरिदर 23 रुपियाँ 8 पैसा, बिक्री दर 23 रुपियाँ 17 पैसा। साउदी अरबियन रियाल 1 को खरिदर 140 रुपियाँ 15 पैसा, बिक्री दर 140 रुपियाँ 31 पैसा। कतारी रियाल 1 को खरिदर 42 रुपियाँ 42 पैसा, बिक्री दर 42 रुपियाँ 58 पैसा। थाई भाट 1 को खरिदर 4 रुपियाँ 61 पैसा, बिक्री दर 4 रुपियाँ 62 पैसा। युएई दिराम एकको खरिदर 42 रुपियाँ 6 पैसा, बिक्री दर 42 रुपियाँ 23 पैसा। मलेसियन रिङ्गिट एकको खरिदर 37 रुपियाँ 82 पैसा, बिक्री दर 37 रुपियाँ 96 पैसा। साउथ कोरियन सयको खरिदर 11 रुपियाँ 52 पैसा, बिक्री दर 11 रुपियाँ 56 पैसा। स्विडिस कर्नर एकको खरिदर 15 रुपियाँ 51 पैसा, बिक्री दर 15 रुपियाँ 57 पैसा। डेनिस कर्नर एकको खरिदर 23 रुपियाँ 19 पैसा, बिक्री दर 23 रुपियाँ 28 पैसा। हङकङ डलर एकको खरिदर 19 रुपियाँ 69 पैसा, बिक्री दर 19 रुपियाँ 76 पैसा। कुवेती दिनार एकको खरिदर 501 रुपियाँ 31 पैसा, बिक्री दर 503 रुपियाँ 26 पैसा। बराइन दिनार एकको खरिदर 409 रुपियाँ 11 पैसा, बिक्री दर 410 रुपियाँ 70 पैसा। ओमानी रियाल एकको खरिदर 401 रुपियाँ 24 पैसा, बिक्री दर 402 रुपियाँ 80 पैसा। यो थियो श्रोता आजको राष्ट्रिय नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कद्वारा तोकिएको खुल्ला बजार वैदेशिक विनिमय दर। हजुर श्रोता, हाम्रो गीत संगीतको यात्रालाई नै जारी राखौ। अहिलेको लागि भने तपाईँहरू माझ पस्कन चाहन्छु श्री गोको जिहादी म।